मिलन गीत सिंगल चित्रपट ए पीरुनु सुवंद शासे आरगने गीत धर्मदास वालपल के हंड्रेड तीन गैम्बरू शब्द पिरिसुद गायने सा गीते जीवेदन सत्य फुल्ली गोना तुले होंदी मदने नो

अरे मीहा, कोई दोहत प्रिय करलनी अक्कद इन्ने मंगल लोके, इन्ने मंगल लोके, ओ इन्ने